पीर पछानै, कट कट के पट पट के जानै। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब

अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता भिधनाना, कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कबले हो सुधारो, कब्यो बाच दोहरा जो निज

रागर तन परवार परिया शब्द गावड़े आया शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो

प्रीत गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दान आख देव आख सुर नर मुन जन सेव किते आख है आखन पाहे किते कह कह ठुठ जाहे ते किते होर क्रेह ताख न सकह के जे वड पहावै ते वडोए नानक जाने साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखी सिर गावा रागा वार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक संखा किते वामन हारे किते राग परी स्यो कही एन किते गावन हारे गावह तोहन पौन पानी बह संतर गावह राजा तरुण द्वारे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद दासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सरा जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहना सुरगा मछ पाए आले गावन रतनो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भक्त रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेस तिसा आदेस आद नील अनाद अनाहत जुग जुगे कोवेस भुगत ज्ञान दा भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अबरा साध संजोग विजोग दुए कार चलाव है लिखिया वह भाग आदेस तिसा आदेस आद नील अनाद अनाहत जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस पावै तिव चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर नावै बहुताए हो वेडाण आदेस तिसै आदेस आद अनील अनाद अनाहत जुग एको वेस आसुण लोए लोए भंडार जोग छपाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेस तिसै आदेस आद नील अनाद अनाहत जुग वेको वेस एक दूजी ब लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ाखी है एक नाम जगदीस ए त्राहे पत पवड़िया चढ़ी हुए एकी सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै न है जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न है जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रोती छिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख हो करमा केते पवन पाणी वै संतरा केते कान महेसा केते ब्रह्मे खड़त कड़ी है रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत
ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾਟ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁੱਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦੁਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੰਤ ਅਨੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵੇਗੁਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭੁਖ ਲਾਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਪਤਾਲ ਘੜੀਐ ਸਭ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮ

परम रूपे नमो जोग जोगे सुवरं परम सिद्धे नमो राज राजे सुवरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपर अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे सुवरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोत्र मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सासान नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता दो उर्दार्दं अगं भोग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोश पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्यं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी च प्रच्छन्द प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं।

कालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विपुते वाहे गुरु जी का काल स्वरूप वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सुबइए श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्ध अधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबीर बात बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रत।

मुसलमान शिव शरीर पल पल करें विचार बंदे से जे पावे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप अपार तीर्थ नामे अर्चा पूजा गुरवास बहकार जोगी सुनते हम जिते अलख नाम करतार सुख अमूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजा देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सुख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले ताऊ तिना पिकाई कार जल तर जी अपनिया लो आया कार आया कार ओए जे आखे सो तू है जना तिना पी तेरी सार नानक पक्ता

0: ज्ञानी बुझे तय सजुर संतोखा धर्म गिरथ आओ त्रेते रजते का जोर गिरथ आओ द्वापर तप कसते गिरथ कालयुग राथक ने का कूड़ गिरथ महला पहला
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में।

कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरनाली। जे को सिख गुरु सेथी सरमुख होवै होवै तां सरमुख सिख कोई जियो रह गुरनाली।

जब दूत कालन खंजनौ सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो करतार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह सबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाइयो।

सत्यायणा किलव करणा नाम पुन चरणा नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन के चरण कमल है आसरा।

छंत प्रभ विपत निवारण इसमें और ना कोई जियो सदा सदा हर सिमरिय जल तल मैयल सोए जियो जल तल मैयल पूर रहया एक नमुख मनौना विसरै गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदी सरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावै सो होए जियो बल जाए नानक सुखै दाते प्रगास मन तन होए जियो श्लोक हर सिमरो मन हर सिमरत मन तन सुखी मिनसी दुतिया सोच नानक टेक कुपाल की गोविंद संकट मोच।

बिन मिलवे सांत ना उपजै, बिलकुल रहण न जाए, हर साधे शरणागति, नानक आस पुजाए छंत, रुत सरस अडंबरो, असु कतवे कतके हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत, कब मिलिया गुण दास जियो, बिन कंत प्यारे, नै सुख सारे, हार कंगन त्रिग बना, सुंदर सुजान चतुर बेती।

चरण बिराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भक्त गिया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद।

अफरियोत लियो ना जाए माया के देवाने प्राणी झूठ ठगोरी पाई लभ लो मोहताज विगुते इब तब फिर पछताई एक सिरे वे तंगत मित पावे आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको भवर पवै ते लोए एको बूझे सूझे पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रहै गुरमुख एक विरला को लहै जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आहक सुनाए।

ठैक मोहि अवगुण पछताए। ठाकुर एक सबाई ना बहुते वेश करे कुड़ियार, पर कर जाती ठाकर हाय महल बुलाई ठाक ना पाई।

ज्यो मछली फाथी जमजार मिण गुण दाते मुक्त न पार फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रहे लिवलाए क्यों छूटे फिर फास न पाए।

सृष्टि प्यो न जाने कोए, सृष्टा करे सुने चोए, संपै को ईसर तिहाई है, संपै गुरु लिखे की पाई है।

संत जना बल जाओ, क्या वैसे कह रही है बाली, क्या आवा कह जाओ, नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो, खड़खड़ वह निरंतर।

अले सुन कहाँ करवासो ज्ञान की मुद्रा कौन पति अले घट घट कौन निवासो काल का ठीगा क्यों जलाई अले क्यों निरपो कर जाइए सह संतोख पासन जाने क्यों छेदे बैर आइए गुरु के शब्द हूँ मैं बिकमारी तन कर हो गए वासो ये नरचर चित से बसाने ते सुख न बसाने नानक तं का दासो कहाँ ते आवे कहाँ जावे कहाँ रह समाई इस शब्द को जो अर्थावे तिस गुरु बिन रह गुर तिल ना तमाई।

साच कमावै गत मित संदेह पाई। आद को विस्माद विचार कथी अले, सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुद्रा गुरु ज्ञान विचारी अले। कट कट साचा सर्व जिया गुरु वचनी अवगत समाया, तत निरंजन सहज लहा नानक दूजी कारण करनी। सेवै सिख सो खोज लहा हुक्म विस्माद हुक्म पुछाणे, जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरान होवै अंतर साच जोगी कही है सोई। अवगतो निर्माल उपजै निर्गुण ते सर्वंतिया, गुरमुख परचे परपा पाई अता शब्द समाए लिया, साचे शब्द समाए लिया। एक एक को साचे कह जाने ओ मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पुछाणे अंतर कवन प्रकाश परतिया। जीवन मरे तब सब के सूझ है